हल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगात कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई। ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया ऊपर बाज वेख रहा सी उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे किवें काल ने सद लिया किनारे ते आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे मौत ने बुला लिया आ जा भाई ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां गगन के गौन कहां काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा कि कबीर एक मरण ते दोए मुए दोए मरण तै चार चार मरण ते छह मुए चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू ता मिर्गनी हरनी भी मर गई ते जेड़ा इसके बच्चा होन वाला सी क्योंकि गर्भवती सी बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया जिसने शिकारी नू दस्या शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार हुण चार हो गए। इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया हुण मेरा जीवन त्रिग है वो भी उथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन। ये छे दी गिनती कीती है बाणी दे विच मिर्गनी दा बच्चा शिकारी शर्प अहेड़न ते पेट दा बच्चा ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया उसी वेले हरनी मर गई नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना उस जगह तो सप निकलिया
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

और इन्हन चक्कियां देनियां कणक पीण वास्ते। हुण जद अरदास होवेगी ते अरदास विच आप जी सरवण करोगे, जिन्ना बीबियां मतावां मीर मन्नू दी जेल विच सवा सवा मन दे पीसने पीसे, बच्चियां दे टुकड़े करा के गला विच हार पवाए। ए अरदास विच आपा रोज सुनदे, संसार विच हर कोई अरदास करदा, हर मजहब विच अरदास है, पर जैसी अरदास सिख धर्म विच है होर किधरे नहीं, क्योंकि इस अरदास विच

थे ता तेरा जीवन अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर। आख्या जिन्हां ने मनुष्या जन्म प्राप्त करके सत संगत नहीं कीती, नितनेम नहीं कीता, गुरु वाले नहीं बने, उन्हां नूं जीवंदियां पशुआं विच नहीं, उन्हां नूं मोया होया पशुआं विच गिणिया। पशु ढोर, ढोर कहिंदे उन मरे होए पशु नूं। आख्या ऐ मनुख, पशु ने आके कितने काज सवारे, काश खा के अमृत रूपी दुध देंदा रहा, ते जदों मर गया तां उस दियां हड्डियां कम आईयां, चबड़े दे जोड़े बने, होर कई समान बने, उस दे मास दी कई जानवरां दी खुराक बनिया, पर तू इत्थे आके केड़ा कम कीता, जे सिमरन नहीं कीता, नाम नहीं जपिया, गुरु के निर्मल पाओ विच नहीं रहा, ता तू मरे हुए पशु नालों ही माड़ा है। इसलिए बिन सत संगत दे

जल्दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे लिए हजूर कह दिन तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया है। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह एक सेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत ते बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड गया ते ओदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुंदर विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया देश धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तां हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिन्हां हरि दा सिमरन कीता सुखी तां ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तो चले गए हन, ते भाई नाम किन्हां दा रह गया जिन्हां ने हरि सिमरन कीता। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हन, पर अज नाम किन्हां दा अमर है जिन्हां ने जपिया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इना श्वासा नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी धनता दे योग।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे कम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पा दी सैकड़े हजारा बरस आरजा होंदी है, आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे कम नहीं आंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे कम

बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत न नाम बिना सिमरन दे आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा नां नहीं जानदा उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है ता की दसेगा आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत न नाम बिन सिमरन जैसे सींझ सतारा बोले कुरु साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई बिन सिमरन

दूसरे पास से वीर ते तीसरे पास से पहला इस शब्द में दो चार दफा होर कह दिए पहला दास बोलन फिर वीर बोलन फिर पहला बोलन।

जी महाराज जी, गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पारसा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दिलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाहरे खुदा, नासरो मनसूर गुरु गोविंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोविंद सिंह। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोविंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोविंद साहब मरगिंद की तरह शेर की तरह, सतगुरु पातशाह जी कभी भी रण मैदान में हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुए। तो सतसंगत जी औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सति श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सति श्री अकाल दे इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आप लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, कि कृपा करो कि आप एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा देंदे हाँ। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आप एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आप आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी बजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पे, कहिंदे ने तुसां ते इह मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मार दिओ। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डण। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसी भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, यह आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सात संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, यह जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगियां तां पता लगेगा। तो सत जी गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उचारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी दिम दिरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम करना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, इहदे विच विचित्र वीणा ते सितार दे बोल हन धीम ते धरना। तो सतगुरु पातशाह कहिंदे तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना, हे अकाल पुरख तेरी कृपा है, तेरी कृपा ते तदर दानी दानी, हे दानी हे दान करन वाले, हे अकाल पुरख सब नूं देण वाले सब नूं बख्शिश करन वाले, कृपा कीती है ये तुसां ने बख्शिश कीते बोल ते नगारे ते

सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत जोत जगमग उल्लू अंध कंद प्रचीन उन्मानिए सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए तैसे मिल साध सं सक

मधुरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सुदे हस्त न पावरी प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी अंग अंगहीन।